0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौदहवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रविवार को कस्तिल गंदोल्फो से विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जहां उन्होंने बीज बोने वाले के दृष्टांत पर चिंतन करते हुए कहा कि यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है। पोप लियो 14वें ने कस्तिल गंदोल्फो में विश्वासियों के साथ वर्ष के 15वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। कस्तिल गंदोल्फो के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज की दम विधि में सुसमाचार लेखक संत मती हमारे लिए बोने वाले का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है, जिसे ईश्वर शब्दों और शक्ति के रूप में हमारे हृदय में बोते हैं। यीशु स्वयं हमारे लिए शरीरधारी शब्द हैं, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपना जीवन दिया है, जिससे पिता निरंतर दुनिया में बीज के रूप में बोते हैं, जिससे वे अपने मरण के द्वारा अधिक फल उत्पन्न करें। पर यह सच है कि वे कभी कभी हम में कठोर और गैर जिम्मेदार भूमि को पाते हैं, एक भ्रमित भूमि के रूप में, बंजर पथरीली एवं कंटीली झाड़ियों के रूप में। लेकिन साथ ही वे ग्रहण करने वाले और उपजाऊ भूमि को भी पाते हैं, जहां हम प्रेम के चमत्कार को देख सकते हैं, जिसमें सारी चीजों को बदलने की शक्ति होती है, जैसे कि हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। यही कारण है कि पिता हमेशा बोने से कभी नहीं थकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका प्रेम हमारे लिए हमारी मानवीय कमजोरियों से कहीं अधिक मजबूत है।
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: संत जॉन क्रिसोस्टम का हवाला देते हुए, जो ईश्वर के वचन को बीज के रूप में संदर्भित करते हैं, पोप ने कहा, कांटों पथरीली भूमि या राह पर बोना कैसे तर्कसंगत हो सकता है? बीजों और भूमि के संदर्भ में यह तर्कहीन लगता है, लेकिन आत्मा और धर्म सिद्धांत के संबंध में यह संभव है, क्योंकि ईश्वर के हाथों में यह संभव है कि वे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दें, पैरों से रौंदे जाने वाले रास्ते या सभी चलने वालों के लिए खुली भूमि को एक समृद्ध धरती बना दें और कांटों को दूर कर दें, जिससे बीज सुरक्षित बढ़ सके। पोप ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर की उदारता अनुभवहीन नहीं बल्कि विवेकपूर्ण है। वे हमारे अंदर एक अच्छी संभावना को देखते हैं, जिससे हम स्वयं अपने में कभी कभी अनुभव करने में असफल होते। यही कारण है कि ईश्वर, जो हमारे हृदय की भूमि को हमसे अधिक अच्छी तरह जानते, हमारे ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ते। यदि हम विश्वास में उन्हें समर्पित होते और उनमें बने रहते हैं, तो हम प्रतिदिन विकास करते हैं। इस भांति जिस उदारता एवं विश्वास में बीजों को बोया जाता है और जिस विनम्रता एवं खुलेपन से हम उन्हें ग्रहण करते हैं, पौत्र आत्मा के फलों का विकास एवं प्रसार हमारे अंदर होता है। संत पौलुस हमें शिक्षा देते और कहते हैं कि वे फल हमारे लिए प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, निष्ठा, विनम्रता और संयम हैं। हमारे विश्व में इन फलों की कितनी आवश्यकता है, जिससे वह उनके द्वारा परिपूर्ण और परिवर्तित हो सके। अतः संत पापा ने कहा कि हम विशेषकर गर्मी छुट्टी के इन दिनों में सुनने, अध्ययन करने और ईश वचन पर चिंतन करने के लिए समय दें, जिससे हम सारी सृष्टि के साथ मिलकर अर्थपूर्ण ढंग से शांति एवं प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें। इस भांति हम शरीर और आत्मा की नवीनता में अपने कार्यों को करने हेतु लौट सकेंगे तथा सुसमाचार के संदेश को घोषित करने और ईश्वर के राज्य के विकास हेतु अपना योगदान दे सकेंगे। तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए पोप ने कहा,
1: Ci aiuti in questo, Maria, regina degli apostoli e stella dell'evangelizzazione.
0: माता मरियम, प्रेरितों की रानी और सुसमाचार का सितारा, इस कार्य में हमारी मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने विश्वासियों का अभिवादन किया. उन्होंने कहा,
1: Saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: मैं इस सुंदर गांव कस्टेल गंडोल्फो के निवासियों का अभिवादन करता हूं, जहां मैं कुछ दिन आराम कर रहा हूं. प्रार्थना में विश्व के विभिन्न हिस्सों के तीर्थयात्री एवं पर्यटक भी उपस्थित थे, जिन्हें संबोधित कर पोप ने कहा,
1: Accolgo con gioia tutti voi pellegrini.
0: दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्री, मैं सहर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ. फिर दुखद घटनाओं की याद करते हुए उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मध्य पूर्व, यूक्रेन एवं दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में फिर से जंग की हवाएं बह रही हैं, जो हिंसा, आतंक एवं मौत फैला रही हैं और एक बार फिर कई बेगुनाह लोगों पर हमला कर रही हैं. आइए हम इन हवाओं को उम्मीद एवं शांति की लौ को बुझाने ना दें, भले ही वह कमजोर और डगमगाती हुई लगे. उन्होंने आगे कहा,
1: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
0: मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि बातचीत, मुलाकात और कूटनीति का रास्ता लगातार अपनाया जाएगा. यही एकमात्र रास्ता है जो सही और स्थायी शांति की ओर ले सकता है, जिसमें लोग मेल मिलाप, आपसी सुरक्षा एवं हर इंसान की इज्जत का सम्मान करते हुए रह सकते हैं. उसके बाद सागर रविवार की याद करते हुए पोप ने कहा, आज सागर रविवार है. मेरी संवेदना दुनिया भर के सभी नाविकों, मछुआरों और बंदरगाह कर्मचारियों के साथ हैं, जो अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं और कभी कभी समुद्र में चल रहे संघर्षों के भय से परेशान रहते हैं. फिर भी वे अपने धैर्य एवं चुपचाप किए जाने वाले कार्य के माध्यम से अनेक लोगों के व्यापार एवं जीवन को सहारा देते हैं. उसके बाद पोप ने पोलैंड के तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहन दिया, जो जसनागोरा के माता मरियम तीर्थस्थल पर वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित हुए थे, ताकि वे मिशनरी शिष्य की तरह सुसमाचार के प्रसंचित साक्षी बन सकें. और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की.
1: बोना डोमेनिका टुटी.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन में युद्ध की क्रूरता की वजह से परेशान जीवित और मृत सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने विश्वासियों से दुनिया और परिवारों में शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का भी आग्रह किया। ये संत पापा के पत्र का मुख्य विषय है, जो उन्होंने राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर को लिखा है, जिन्हें संत पापा ने यूक्रेन में लैटिन रीति की कलीसिया की संरचना को ठीक करने की 35वीं सालगिरह का समारोह मनाने के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। यह समारोह 19 जुलाई को बाडिकियू में माउंट कार्मेल की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थालय में होगा। पत्र में संत पापा लियो ने संत पापा ग्रेगोरी 9वें के 1234 में भेजे गए पत्र के शब्दों को याद किया, जो उन्होंने आज के यूक्रेन के इलाके में रहने वाले लैटिन रीति के पुरोहितों और विश्वासियों के लिए भेजा था। उस पत्र में संत पापा ग्रेगोरी ने लिखा कि कलीसिया अपने भक्तों और विनम्र बच्चों के प्रति खास दया दिखाती है, ताकि वे बुरे लोगों के हमलों से परेशान न हों। संत पापा लियो लिखते हैं कि आने वाली सदियों में उस देश में रहने वाले कैथोलिक पुरोहितों और विश्वासियों ने इतिहास की कई घटनाओं के बीच विश्वास की मजबूती से गवाही दी, खासकर 20वीं सदी के दौरान, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन सोवियत विचारधारा से प्रेरित शासन के अधीन था। उस समय उस इलाके में कैथोलिक कलीसिया पर क्रूर जुल्म किया गया, जिसे नागर अधिकारियों ने संगठित किया था और अंजाम दिया था, जिसका मकसद लोगों के बीच से इसे पूरी तरह खत्म करना था। संत पापा ने बताया कि यूक्रेनी कलीसिया को बाद में नया जीवन मिला और समुदाय बढ़ती गई, और अब यह अपने संस्थानों की बहाली की 35वीं सालगिरह के साथ साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की यूक्रेन की प्रेरितिक यात्रा की 25वीं सालगिरह मना रही है। संत पापा महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर से यह भी कहते हैं कि वे समारोहों में भाग लेने वालों को दुनिया और परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करने और ईश्वर की आज्ञाओं पर अडिग रहने के लिए प्रोत्साहित करें। उधर वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी ने रविवार को बताया कि संत पापा लियो 14वें सोमवार 14 सितंबर को सुबह 11 बजे वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी का दौरा करेंगे और प्रेरितिक प्रदर्शन चक्र कैटास्ट्रोफी एंड वंडर के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 25 सितंबर 2026 से 14 मई 2027 तक हफ्ते के कुछ चुने हुए दिनों में आगंतुकों के लिए खुली रहेगी। यह प्रदर्शन आज के जमाने के तीन लोगों, फ्रेंच आर्टिस्ट J.R., अमेरिकन टाइपोग्राफर बिल मोरन और इटालियन शेफ पियर आंजेली के कामों को एक साथ लाता है, जो संत पापा की लाइब्रेरी के संग्रह और जगहों के साथ बातचीत करते हैं और पानी को एक खतरे और एक स्रोत दोनों के तौर पर दिखाते हैं। तीनों कलाकार साथी अपनी अपनी कला प्रदर्शन के जरिए लाइब्रेरी के ऐतिहासिक संग्रह को नए तरीके से दिखाते हैं। उधर 20 से 26 जुलाई तक जकार्ता में होने वाले एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं प्लेनरी असेंबली के लिए अपने विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेशियस को लिखे एक पत्र में संत पापा लियो 14वें ने एशिया की कलीसिया से अपील की है कि वे अपने कामों में ईश्वर को और अपने फैसलों में केंद्र में इंसान को रखें, बिना इस डर के कि हमारे समय के निर्माण स्थल पर हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। समन्वय के निर्माता बने, बाबिल के वास्तुकार नहीं। आने वाले राज्य के सेवक बने, न कि उन टावरों के मालिक जो गिरने वाले हैं। इन शब्दों के साथ संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास में की गई अपनी अपील को दोहराया कि ईश्वर को हमारे कामों के क्षितिज पर और इंसान को हमारे फैसलों के केंद्र में रखें। संत पापा लियो ने विश्वासियों और अपने भाई धर्माध्यक्षों को प्रोत्साहित किया कि वे हमारे समय के निर्माण स्थल पर अपने हाथ गंदा करने से न डरें, इस उम्मीद से कि एशिया की प्यारी कलीसिया
विश्वास और मानवता में हमेशा फूलती और फलती रहे। उधर सोमालिया में 2 मिलियन से ज्यादा लोग सूखे से प्रभावित हैं, खासकर देश के उत्तरी इलाकों में। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ओचा ने यह घोषणा करते हुए बताया कि अप्रैल और जून के बीच बहुत कम बारिश ने देश के उत्तरी इलाकों में संकट को और बढ़ा दिया है, जहां अधिकारी तुरंत मदद की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 5,70,000 से ज्यादा लोगों को पानी की जरूरत है और लगभग 1.5 मिलियन लोगों को खाने की मदद की जरूरत है। सोमालिया में जिहादियों और सेना के बीच झड़पें जारी हैं। मानव संकट से 9 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ओचा ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ने का खतरा है। लगभग 2,50,000 लोग सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि कम से कम 94 कुएं बंद हैं या सिर्फ कुछ हद तक काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं, जिससे सबसे कमजोर परिवारों के लिए इस स्रोत तक पहुंच और भी मुश्किल हो गया है। कुपोषण में बढ़ोतरी भी चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4 लाख से ज्यादा सोमाली बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। उधर इसराइल अपना हमला जारी रखे हुए है। कल ही गाजा पट्टी में 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर में सबरा इलाके में एक हमले की पुष्टि की, जिसमें हमास के हथियार बनाने की जगह को निशाना बनाया गया, जो अभी भी संगठन की संगठनात्मक क्षमताओं को फिर से खड़ा करने की कोशिश की बातचीत का साफ उल्लंघन करते हुए काम कर रहा है। हालांकि नुसरत में एक कैंप पर हुए हमले की पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें कथित तौर पर एक 9 साल की बच्ची मारी गई। इस बीच लेबनानी मोर्चा और राजनयिक स्तर पर इसराइल और बेरूत के बीच बातचीत का एक नया दौर रोम स्थित अमेरिकी दूतावास में 14 और 15 जुलाई को होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रतिनिधि मंडल पहले ही रोम शहर पहुँच चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में 2 पायलट जोन को सक्रिय करने की बात हो रही है, जहां से इजरायली सेना हट जाएगी और उन्हें लेबनानी सेना को सौंप देगी, बशर्ते कि शिया मिलिशिया हिजबुल्ला भी उस इलाके से हट जाए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौदहवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रविवार को कस्तेल गंदोल्फो से विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जहां उन्होंने बीज बोने वाले के दृष्टांत पर चिंतन करते हुए कहा कि यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है। पोप लियो 14वें ने कस्तेल गंदोल्फो में विश्वासियों के साथ वर्ष के 15वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज के दमविधि में सुसमाचार लेखक संत मती हमारे लिए बोने वाले का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है, जिसे ईश्वर शब्दों और शक्ति के रूप में हमारे हृदय में बोते हैं। यीशु स्वयं हमारे लिए शरीरधारी शब्द हैं, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपना जीवन दिया है, जिससे पिता निरंतर दुनिया में बीज के रूप में बोते हैं, जिससे वे अपने मरण के द्वारा अधिक फल उत्पन्न करें। पर यह सच है कि वे कभी कभी हम में कठोर और गैर जिम्मेदार भूमि को पाते हैं, एक भ्रमित भूमि के रूप में, बंजर पथरीली एवं कंटीली झाड़ियों के रूप में। लेकिन साथ ही वे ग्रहण करने वाले और उपजाऊ भूमि को भी पाते हैं, जहां हम प्रेम के चमत्कार को देख सकते हैं, जिसमें सारी चीजों को बदलने की शक्ति होती है, जैसे कि हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। यही कारण है कि पिता हमेशा बोने से कभी नहीं थकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका प्रेम हमारे लिए हमारी मानवीय कमजोरियों से कहीं अधिक मजबूत है।
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: संत जॉन क्रिसोस्टम का हवाला देते हुए, जो ईश्वर के वचन को बीज के रूप में संदर्भित करते हैं, पोप ने कहा, कांटों पथरीली भूमि या राह पर बोना कैसे तर्कसंगत हो सकता है? बीजों और भूमि के संदर्भ में यह तर्कहीन लगता है, लेकिन आत्मा और धर्म सिद्धांत के संबंध में यह संभव है, क्योंकि ईश्वर के हाथों में यह संभव है कि वे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दें, पैरों से रौंदे जाने वाले रास्ते या सभी चलने वालों के लिए खुली भूमि को एक समृद्ध धरती बना दें और कांटों को दूर कर दें, जिससे बीज सुरक्षित बढ़ सकें। पोप ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर की उदारता अनुभवहीन नहीं बल्कि विवेकपूर्ण है। वे हमारे अंदर एक अच्छी संभावना को देखते हैं, जिससे हम स्वयं अपने में कभी कभी अनुभव करने में असफल होते। यही कारण है कि ईश्वर, जो हमारे हृदय की भूमि को हमसे अधिक अच्छी तरह जानते, हमारे ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ते। यदि हम विश्वास में उन्हें समर्पित होते और उनमें बने रहते हैं, तो हम प्रतिदिन विकास करते हैं। इस भांति जिस उदारता एवं विश्वास में बीजों को बोया जाता है और जिस विनम्रता एवं खुलेपन से हम उन्हें ग्रहण करते हैं, पौत्र आत्मा के फलों का विकास एवं प्रसार हमारे अंदर होता है। संत पौलुस हमें शिक्षा देते और कहते हैं कि वे फल हमारे लिए प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, निष्ठा, विनम्रता और संयम हैं। हमारे विश्व में इन फलों की कितनी आवश्यकता है, जिस सेवा उनके द्वारा परिपूर्ण और परिवर्तित हो सके। अतः संत पापा ने कहा कि हम विशेषकर गर्मी छुट्टी के इन दिनों में सुनने, अध्ययन करने और ईश वचन पर चिंतन करने के लिए समय दें, जिससे हम सारी सृष्टि के साथ मिलकर अर्थपूर्ण ढंग से शांति एवं प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें। इस भांति हम शरीर और आत्मा की नवीनता में अपने कार्यों को करने हेतु लौट सकेंगे तथा सुसमाचार के संदेश को घोषित करने और ईश्वर के राज्य के विकास हेतु अपना योगदान दे सकेंगे। तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए पोप ने कहा,
1: Ci aiuti in questo, Maria, regina degli apostoli e stella dell'evangelizzazione.
0: माता मरियम प्रेरितों की रानी और सुसमाचार का सितारा, इस कार्य में हमारी मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने विश्वासियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: Saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: मैं इस सुंदर गांव कस्तल गंदोल्फो के निवासियों का अभिवादन करता हूं, जहां मैं कुछ दिन आराम कर रहा हूं। प्रार्थना में विश्व के विभिन्न हिस्सों के तीर्थयात्री एवं पर्यटक भी उपस्थित थे, जिन्हें संबोधित कर पोप ने कहा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्री, मैं सहर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर दुखद घटनाओं की याद करते हुए उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मध्य पूर्व, यूक्रेन एवं दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में फिर से जंग की हवाएं बह रही हैं, जो हिंसा, आतंक एवं मौत फैला रही हैं और एक बार फिर कई बेगुनाह लोगों पर हमला कर रही हैं। आइए हम इन हवाओं को उम्मीद एवं शांति की लौ को बुझाने ना दें, भले ही वह कमजोर और डगमगाती हुई लगे। उन्होंने आगे कहा,
1: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
0: मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि बातचीत, मुलाकात और कूटनीति का रास्ता लगातार अपनाया जाएगा। यही एकमात्र रास्ता है जो सही और स्थायी शांति की ओर ले सकता है, जिसमें लोग मेल मिलाप, आपसी सुरक्षा एवं हर इंसान की इज्जत का सम्मान करते हुए रह सकते हैं। उसके बाद सागर रविवार की याद करते हुए पोप ने कहा, आज सागर रविवार है। मेरी संवेदना दुनिया भर के सभी नाविकों, मछुआरों और बंदरगाह कर्मचारियों के साथ हैं, जो अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं और कभी कभी समुद्र में चल रहे संघर्षों के भय से परेशान रहते हैं। फिर भी वे अपने धैर्य एवं चुपचाप किए जाने वाले कार्य के माध्यम से अनेक लोगों के व्यापार एवं जीवन को सहारा देते हैं। उसके बाद पोप ने पोलैंड के तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहन दिया, जो जसनागोरा के माता मरियम तीर्थस्थल पर वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित हुए थे, ताकि वे मिशनरी शिष्य की तरह सुसमाचार के प्रसंचित साक्षी बन सकें। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: बोना डोमेनिका टुटी।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन में युद्ध की क्रूरता की वजह से परेशान जीवित और मृत सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने विश्वासियों से दुनिया और परिवारों में शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का भी आग्रह किया। ये संत पापा के पत्र का मुख्य विषय है, जो उन्होंने राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर को लिखा है, जिन्हें संत पापा ने यूक्रेन में लैटिन रीति की कलीसिया की संरचना को ठीक करने की 35वीं सालगिरह का समारोह मनाने के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। यह समारोह 19 जुलाई को बाडिकियू में माउंट कार्मेल की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थालय में होगा। पत्र में संत पापा लियो ने संत पापा ग्रेगोरी 9वें के 1234 में भेजे गए पत्र के शब्दों को याद किया, जो उन्होंने आज के यूक्रेन के इलाके में रहने वाले लैटिन रीति के पुरोहितों और विश्वासियों के लिए भेजा था। उस पत्र में संत पापा ग्रेगोरी ने लिखा कि कलीसिया अपने भक्तों और विनम्र बच्चों के प्रति खास दया दिखाती है, ताकि वे बुरे लोगों के हमलों से परेशान न हों। संत पापा लियो लिखते हैं कि आने वाली सदियों में उस देश में रहने वाले कैथोलिक पुरोहितों और विश्वासियों ने इतिहास की कई घटनाओं के बीच विश्वास की मजबूती से गवाही दी, खासकर 20वीं सदी के दौरान, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन सोवियत विचारधारा से प्रेरित शासन के अधीन था। उस समय उस इलाके में कैथोलिक कलीसिया पर क्रूर जुल्म किया गया, जिसे नागर अधिकारियों ने संगठित किया था और अंजाम दिया था, जिसका मकसद लोगों के बीच से इसे पूरी तरह खत्म करना था। संत पापा ने बताया कि यूक्रेनी कलीसिया को बाद में नया जीवन मिला और समुदाय बढ़ती गई, और अब यह अपने संस्थानों की बहाली की 35वीं सालगिरह के साथ साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की यूक्रेन की प्रेरित यात्रा की 25वीं सालगिरह मना रही है। संत पापा महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर से यह भी कहते हैं कि वे समारोहों में भाग लेने वालों को दुनिया और परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करने और ईश्वर की आज्ञाओं पर अडिग रहने के लिए प्रोत्साहित करें। उधर वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी ने रविवार को बताया कि संत पापा लियो 14वें सोमवार 14 सितंबर को सुबह 11 बजे वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी का दौरा करेंगे और प्रेरितिक प्रदर्शन चक्र कैटास्ट्रोफी एंड वंडर के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 25 सितंबर 2026 से 14 मई 2027 तक हफ्ते के कुछ चुने हुए दिनों में आगंतुकों के लिए खुली रहेगी। यह प्रदर्शन आज के जमाने के तीन लोगों, फ्रेंच आर्टिस्ट J.R., अमेरिकन टाइपोग्राफर बिल मोरन और इटालियन शेफ पियर आंजेली के कामों को एक साथ लाता है, जो संत पापा की लाइब्रेरी के संग्रह और जगहों के साथ बातचीत करते हैं और पानी को एक खतरे और एक स्रोत दोनों के तौर पर दिखाते हैं। तीनों कलाकार साथी अपनी अपनी कला प्रदर्शन के जरिए लाइब्रेरी के ऐतिहासिक संग्रह को नए तरीके से दिखाते हैं। उधर 20 से 26 जुलाई तक जकार्ता में होने वाले एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं प्लेनरी असेंबली के लिए अपने विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेशियस को लिखे एक पत्र में संत पापा लियो 14वें ने एशिया की कलीसिया से अपील की है कि वे अपने कामों में ईश्वर को और अपने फैसलों में केंद्र में इंसान को रखें, बिना इस डर के कि हमारे समय के निर्माण स्थल पर हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। समन्वय के निर्माता बने, बाबिल के वास्तुकार नहीं। आने वाले राज्य के सेवक बने, न कि उन टावरों के मालिक जो गिरने वाले हैं। इन शब्दों के साथ संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास में की गई अपनी अपील को दोहराया कि ईश्वर को हमारे कामों के क्षितिज पर और इंसान को हमारे फैसलों के केंद्र में रखें। संत पापा लियो ने विश्वासियों और अपने भाई धर्माध्यक्षों को प्रोत्साहित किया कि वे हमारे समय के निर्माण स्थल पर अपने हाथ गंदा करने से न डरें, इस उम्मीद से कि एशिया की प्यारी कलीसिया
विश्वास और मानवता में हमेशा फूलती और फलती रहे। उधर सोमालिया में 2 मिलियन से ज्यादा लोग सूखे से प्रभावित हैं, खासकर देश के उत्तरी इलाकों में। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ओचा ने यह घोषणा करते हुए बताया कि अप्रैल और जून के बीच बहुत कम बारिश ने देश के उत्तरी इलाकों में संकट को और बढ़ा दिया है, जहां अधिकारी तुरंत मदद की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 5,70,000 से ज्यादा लोगों को पानी की जरूरत है और लगभग 1.5 मिलियन लोगों को खाने की मदद की जरूरत है। सोमालिया में जिहादियों और सेना के बीच झड़पें जारी हैं। मानव संकट से 9 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ओचा ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ने का खतरा है। लगभग 2,50,000 लोग सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि कम से कम 94 कुएं बंद हैं या सिर्फ कुछ हद तक काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं, जिससे सबसे कमजोर परिवारों के लिए इस स्रोत तक पहुंच और भी मुश्किल हो गया है। कुपोषण में बढ़ोतरी भी चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4 लाख से ज्यादा सोमाली बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। उधर इसराइल अपना हमला जारी रखे हुए है। कल ही गाजा पट्टी में 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर में सबरा इलाके में एक हमले की पुष्टि की, जिसमें हमास के हथियार बनाने की जगह को निशाना बनाया गया, जो अभी भी संगठन की संगठनात्मक क्षमताओं को फिर से खड़ा करने की कोशिश की बातचीत का साफ उल्लंघन करते हुए काम कर रहा है। हालांकि नुसरत में एक कैंप पर हुए हमले की पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें कथित तौर पर एक 9 साल की बच्ची मारी गई। इस बीच लेबनानी मोर्चा और राजनयिक स्तर पर इसराइल और बेरूत के बीच बातचीत का एक नया दौर रोम स्थित अमेरिकी दूतावास में 14 और 15 जुलाई को होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रतिनिधि मंडल पहले ही रोम शहर पहुँच चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में 2 पायलट जोन को सक्रिय करने की बात हो रही है, जहां से इजरायली सेना हट जाएगी और उन्हें लेबनानी सेना को सौंप देगी, बशर्ते कि शिया मिलिशिया हिजबुल्ला भी उस इलाके से हट जाए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: जीवित होंगे और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू।

0: यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
1: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है।
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना हाल ही में 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें लिखते हैं, यह अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समय की चुनौतियों का सामना अपने विचारों की स्पष्टता और उत्तरदायित्व में कैसे करते हैं। हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम पर्याप्त नियमावली को लागू करते हों, जो न्याय को स्थापित करने और तकनीकी शक्ति के विकृत प्रभाव पर रोक लाने का साधन बनता हो। इसके बावजूद यहाँ हम मुद्दे को सिर्फ नीति निर्धारण तक सीमित नहीं पाते हैं, जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने हमें सचेत कराया है। हमें अपने को सही अर्थ में पूछने की जरूरत है, जो शक्ति को अपने में वाहन करते हैं, हम उसका उपयोग किस रूप में करते हैं। हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि न्यूक्लियर शक्ति, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना की तकनीकी, हमारे अपने DNA का ज्ञान और दूसरी कई काबिलियतें जिन्हें हमने हासिल की है, जिनके पास यह ज्ञान है और खासकर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आर्थिक संसाधन, पूरी मानवता और पूरी दुनिया पर एक जबरदस्त दबदबा कायम किया है। अतीत में यह सरकार के ऊपर निर्भर करता था कि वे नवीनता के संबंध में दिशा निर्देशन जारी करें। आज यद्यपि विकास के मुख्य कर्ता धर्ता व्यक्तिगत रूप में मुख्यतः ट्रांसनेशनल पार्टियां हैं, जिनके पास कई सरकारों से ज्यादा संसाधन और दखल देने की क्षमता है। इस तरह तकनीकी शक्ति एक ऐसा रूप ले लेती है जो पहले कभी नहीं हुआ। यह ज्यादातर निजीकरण के रूप में होता है, जिससे ऐसी शक्ति को पहचानना, नियंत्रण करना और आम भलाई के लिए इस्तेमाल करना और भी मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, यही कारण है संत पापा लियो लिखते हैं कि हमारे लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम आत्म परीक्षण की एक साझा प्रक्रिया की शुरुआत करें, जो हम में होने वाले परिवर्तन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को पहचानने में मदद करेगा। यदि हम सिर्फ आकस्मिकताओं पर ध्यान देते हैं, तो हम इमरजेंसी के बाद आने वाले हालात से अपने लिए एक जोखिम को पाएंगे। हम एक तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन के दौर में जीवन यापन कर रहे हैं, एक परिवर्तन के युग में जिसमें कुछ लोग नई प्रौद्योगिकियों के भविष्य की होड़ में हैं, तो दूसरे इस मामले पर चिंतन करने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। वहीं अधिकांश लोग देखने और प्रतीक्षा करने में हैं, दूर से निरीक्षण कर रहे हैं और केवल सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में लगे हैं। इसी कारण से जरूरी सवाल हमारी अंतरात्माओं में उठते हैं और जिन्हें हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? किस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने की चाह रखते हैं? एक मानव समुदाय लोगों के रूप में हम किस दिशा में जाने का चुनाव करें। इन सवालों का जवाब देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के काल में अपने को सही दिशा में निर्देशित करने हेतु संत पापा लियो लिखते हैं, मैं धर्म ग्रंथ के दो दृश्यों को आपके मनस पटल में लाना चाहूंगा, बाबिल मीनार का निर्माण और यरूशलेम की दीवार का पुनर्निर्माण। बाबिल के मंदिर की कहानी उत्पत्ति ग्रंथ में आती है, मानवता की शुरुआत में, नोआ के पुत्रों की वंशावली के तुरंत बाद। शिनार की भूमि में स्थापित होने के बाद लोगों ने एक शहर और एक मीनार निर्माण करने का विचार किया जिसकी ऊंचाई स्वर्ग को छूती हो। यह धरती में भय को प्रसारित करता है। वे अपने में स्थायित्व और शक्ति को सुनिश्चित करने की चाह रखते हैं, उससे भी बढ़कर अपने लिए एक नाम हासिल करने की चाह। यह एक शानदार काम था, एक भाषा, एक तकनीकी, एक दिशा, लेकिन इस परियोजना में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था। इस परियोजना की शुरुआत ईश्वरीय सहमति के बिना हुई थी, जिसमें एक रूपता का सहयोग था जो विभिन्नताओं को खत्म करती और एकता के बदले एक रूपता को प्राथमिकता देती थी। जब एक शहर का निर्माण घमंड और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता में होता है, संचार का सिलसिला टूट जाता है, भाषा में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और लोगों में एक दूसरे को समझने की योग्यता खत्म हो जाती है। इसका परिणाम एकता नहीं बल्कि बिखराव होता है। बाबिल का मीनार इस भांति किसी भी प्रयास की सीमाओं को प्रकट करता है, जो चाहे कितना भी भव्य हो, जो आत्म पुष्टि से उत्पन्न होता है, दक्षता के लिए मानवीय गरिमा का त्याग करता है और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना स्वर्ग तक पहुंचने की इच्छा रखता है। श्रोताओं, इसके विपरीत नबी नहमिया की पुस्तिका हमारे लिए प्राचीन इसराइल के इतिहास की एक अति संवेदनशील स्थिति को प्रस्तुत करती है। बाबिलोन निर्वासन के उपरांत कुछ लोग यरूशलेम लौटकर आए, लेकिन शहर अब तक खंडहर की स्थिति में था। उसकी दीवारों को ढह दिया गया था और द्वारों को जला दिया गया था। नहमिया एक यहूदी जो फारसी राजा की सेवा में नियुक्त था, उसे अपने पैतृक शहर की दयनीय स्थिति की खबर मिली। अपने निर्णय और कार्य शुरू करने के पूर्व उन्होंने उपवास, प्रार्थना और लोगों के लिए निवेदन किए। इसके बाद उन्होंने राजा से यरूशलेम लौटने की अनुमति मांगी और वहां पहुंचने के बाद चुपचाप विध्वंस क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी ओर से निदानों को नहीं थोपा। उन्होंने परिवारों को बुलाया और दीवार के एक भाग का पुनः निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने उनकी बातों को सुना, उनकी कोशिशों का संचालन किया और कोई विरोध होने पर उनकी चर्चा की। यह वृतांत हमें यह दिखलाता है कि शहर का पुनर्जन्म कैसे हुआ। इसकी पहल किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई, लेकिन इसके लिए सभों ने अपने उत्तरदायित्वों को साझा किया। नर नारियां, पुरोहितगण, शिल्पकार, घरों के प्रधान और युवाओं, सभों ने अपनी ओर से एक भूमिका निभाई। यह परियोजना ईश्वर को केंद्र बिंदु में रखते हुए शुरू की गई, जहां हम पत्थरों के निर्माण के पूर्व संबंधों को पुनर्निर्माण होता पाते हैं। इस भांति प्राचीन यरूशलेम को पुनः एक जन सामान्य भाषा प्राप्त हुई, जो एक रूपक नहीं बल्कि एकता का रूप था। मुख्यतः वह एकता जिसकी शुरुआत तब होती है जब सभी लोग अपनी भूमिका को वहन करते हैं और यह पहचानते हैं कि उनकी शक्ति प्रभु से आती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व नेता, नोबेल पुरस्कार विजेता और एआई विशेषज्ञ बोर्गो लाउदातो सी में एकत्रित होंगे। कस्तेल गंदोल्फो के परमधाम पीठे उद्यान बोर्गो लाउदातो सी में वैटिकन 14 से 16 जुलाई तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु युद्ध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सभा की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर के 200 से अधिक जाने माने नेता और शांति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। पोप लियो 14वें के नए प्रेरित विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास से प्रेरित होकर, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव की सुरक्षा के लिए समर्पित है, यह सभा ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, बढ़ती आय स्थिरता और परमाणु हथियार से माहौल लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यह पोप लियो के निरस्त्र एवं निशस्त्रीकृत शांति के दृष्टिकोण का हिस्सा है। 30 नोबेल पुरस्कार विजेता, 30 देशों के प्रतिनिधि, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकारें, 20 प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, जिनमें ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एएआरयू और एंथ्रोपिक शामिल हैं। साथ ही दुनिया के 30 प्रमुख विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान साथ मिलकर आज मानव के सामने मौजूद मुख्य चुनौतियों पर कॉन्क्लेव की शैली में बातचीत करेंगे, खासकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, नई तकनीकी के प्रबंधन, निरस्त्रीकरण एवं शांति की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्था के विकास पर चर्चा करने की उम्मीद है। चर्चा के केंद्र में एक नए वैश्विक मॉडल की खोज होगी, जो नए परिवर्तन, जिम्मेदारी और नैतिकता को मिला सके। घोषणा का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के लिए सिद्धांत एवं गाइडलाइन बनाना है, जो सहयोग, मानव सम्मान, पूर्ण मानव विकास एवं लोगों के बीच शांति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। वेनेजुएला में आए खतरनाक भूकंप के 3 हफ्ते बाद भी बचाव दल मलबा निकालने का काम जारी रखा है, क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। 24 जून को वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 4,490 हो गई है। वेनेजुएला के अधिकारियों ने रविवार देर शाम दक्षिणी अमेरिकी देश में आए खतरनाक भूकंपों पर ताज़ा अपडेट में कहा कि 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 18,000 लोग अब बेघर हो गए हैं। भूकंप के लगभग 3 हफ्ते बाद भी कई लोगों का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि परिवार मलबे में अपने प्रियजनों के शवों को ढूंढ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग 6,500 लोगों को बचाया गया है। बचाव की कोशिशें हृदय विदारक हैं। रॉयटर ने लागुएरा शहर, जो इस आपदा का सेंटर था, उसकी एक लड़की की कहानी बताई है, जो भूकंप के बाद 24 घंटों तक मलबे के नीचे होश में थी। बचाव करने वाले उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक खास उपकरण की आवश्यकता थी, जो कभी नहीं पहुंचा। उसके 17 साल की दोस्त मरिया ने रॉयटर को बताया कि जब भूकंप आया, तब वे दोनों अपने आने वाले स्नातक की पढ़ाई के लिए एक नृत्य का अभ्यास कर रही थी। 17 घंटे तक मलबे के नीचे फंसी मरिया को आखिरकार जिंदा बचा लिया गया। कार्यक्रम की तैयारी हेतु अभ्यास कर रही 10 में से 6 को बचा लिया गया है। इस आपदा के बाद ऐसी ही कई कहानियां सामने आई हैं। इस बीच विदेश से आए अग्निशमक और विशेष राहत दल, जिन्हें शुरुआती आपातकालीन कार्यों के दौरान राहत कार्य में लगाया गया था, अब अपने देश लौट रहे हैं। एक ब्रिटिश अग्निशमक ने बीबीसी को बताया, हमें पता था कि कुछ लोग जिंदे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारा मलबा और अवशेष होने की वजह से हम समय पर वहां नहीं पहुंच सके और दुर्भाग्य से लोग गुजर गए। ब्रिटिश बचाव दल के एक अन्य सदस्य ने वेनेजुएला के लोगों की इतनी तकलीफ के बावजूद दिखाई गई हिम्मत एवं दरिया दिली के बारे बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने घर, दोस्त एवं परिवार खो दिए हैं, फिर भी उन्होंने हम पर मेहरबानी करने के लिए समय निकाला। वे हमें पानी, मिठाई, जो कुछ भी उनके पास था दे रहे थे। वे यह सिर्फ इसलिए दे रहे थे ताकि हम उन मुश्किल पलों से निकल सकें। उनकी मेहरबानी बहुत खास थी। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने अगले 6 महीनों में 1.3 मिलियन लोगों को मानवीय मदद देने के लिए लगभग $300 मिलियन की अर्जेंट अपील की है।
संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भूकंप से 6.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो वेनेजुएला के जीडीपी का लगभग 6% है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 5 साल से कम उम्र के 3.7 मिलियन अफगान बच्चों को कुपोषण का खतरा है और देश में सबसे अधिक भूख के दिनों में समय से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील की गई है, क्योंकि खाने की कमी और खराब पोषण देश के सबसे छोटे एवं सबसे कमजोर बच्चों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट पूरे देश में बच्चों के पोषण में खतरनाक गिरावट को दिखाती है और वार्षिक कुपोषण की अवधि तेज होने से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील करती है। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुसूचित जाति के ख्रिस्तियों के अधिकारों और मणिपुर में मानवीय संकट पर चिंता जताई गई है। ज्ञापन पर सीबीसीआई के अध्यक्ष कार्डिनल एंटनी पुला एवं सीबीसीआई के महासचिव महाधर्मदक्ष अनिल कुट्टो के हस्ताक्षर हैं। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीबीसीआई के डिप्टी सेक्रेटरी फादर मैथ्यू कोइकल, कैथोलिक काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंटोस एंटनी और जोनाथन भी शामिल थे। सम्मेलन ने सरकार से प्रस्तावित संशोधन बिल और हाल ही में नोटिफाई किए गए नियमों को वापस लेने की अपील की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना हाल ही में 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें लिखते हैं, यह अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने समय की चुनौतियों का सामना अपने विचारों की स्पष्टता और उत्तरदायित्व में कैसे करते हैं। हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम पर्याप्त नियमावली को लागू करते हों, जो न्याय को स्थापित करने और तकनीकी शक्ति के विकृत प्रभाव पर रोक लाने का साधन बनता हो। इसके बावजूद यहाँ हम मुद्दे को सिर्फ नीति निर्धारण तक सीमित नहीं पाते हैं, जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने हमें सचेत कराया है। हमें अपने को सही अर्थ में पूछने की जरूरत है, जो शक्ति को अपने में वाहन करते हैं, हम उसका उपयोग किस रूप में करते हैं। हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि न्यूक्लियर शक्ति, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना की तकनीकी, हमारे अपने DNA का ज्ञान और दूसरी कई काबिलियतें जिन्हें हमने हासिल की है, जिनके पास यह ज्ञान है और खासकर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आर्थिक संसाधन, पूरी मानवता और पूरी दुनिया पर एक जबरदस्त दबदबा कायम किया है। अतीत में यह सरकार के ऊपर निर्भर करता था कि वे नवीनता के संबंध में दिशा निर्देशन जारी करें। आज यद्यपि विकास के मुख्य कर्ता धर्ता व्यक्तिगत रूप में मुख्यतः ट्रांसनेशनल पार्टियां हैं, जिनके पास कई सरकारों से ज्यादा संसाधन और दखल देने की क्षमता है। इस तरह तकनीकी शक्ति एक ऐसा रूप ले लेती है जो पहले कभी नहीं हुआ। यह ज्यादातर निजीकरण के रूप में होता है, जिससे ऐसी शक्ति को पहचानना, नियंत्रण करना और आम भलाई के लिए इस्तेमाल करना और भी मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, यही कारण है संत पापा लियो लिखते हैं कि हमारे लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम आत्म परीक्षण की एक साझा प्रक्रिया की शुरुआत करें, जो हम में होने वाले परिवर्तन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को पहचानने में मदद करेगा। यदि हम सिर्फ आकस्मिकताओं पर ध्यान देते हैं, तो हम इमरजेंसी के बाद आने वाले हालात से अपने लिए एक जोखिम को पाएंगे। हम एक तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन के दौर में जीवन यापन कर रहे हैं, एक परिवर्तन के युग में जिसमें कुछ लोग नई प्रौद्योगिकियों के भविष्य की होड़ में हैं, तो दूसरे इस मामले पर चिंतन करने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। वहीं अधिकांश लोग देखने और प्रतीक्षा करने में हैं, दूर से निरीक्षण कर रहे हैं और केवल सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद में लगे हैं। इसी कारण से जरूरी सवाल हमारी अंतरात्माओं में उठते हैं और जिन्हें हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? किस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने की चाह रखते हैं? एक मानव समुदाय लोगों के रूप में हम किस दिशा में जाने का चुनाव करें। इन सवालों का जवाब देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के काल में अपने को सही दिशा में निर्देशित करने हेतु संत पापा लियो लिखते हैं, मैं धर्म ग्रंथ के दो दृश्यों को आपके मनस पटल में लाना चाहूंगा, बाबिल मीनार का निर्माण और यरूशलेम की दीवार का पुनर्निर्माण। बाबिल के मंदिर की कहानी उत्पत्ति ग्रंथ में आती है, मानवता की शुरुआत में नोआ के पुत्रों की वंशावली के तुरंत बाद। शिनार की भूमि में स्थापित होने के बाद लोगों ने एक शहर और एक मीनार निर्माण करने का विचार किया जिसकी ऊंचाई स्वर्ग को छूती हो। यह धरती में भय को प्रसारित करता है। वे अपने में स्थायित्व और शक्ति को सुनिश्चित करने की चाह रखते हैं, उससे भी बढ़कर अपने लिए एक नाम हासिल करने की चाह। यह एक शानदार काम था, एक भाषा, एक तकनीकी, एक दिशा, लेकिन इस परियोजना में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था। इस परियोजना की शुरुआत ईश्वरीय सहमति के बिना हुई थी, जिसमें एक रूपता का सहयोग था जो विभिन्नताओं को खत्म करती और एकता के बदले एक रूपता को प्राथमिकता देती थी। जब एक शहर का निर्माण घमंड और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता में होता है, संचार का सिलसिला टूट जाता है, भाषा में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और लोगों में एक दूसरे को समझने की योग्यता खत्म हो जाती है। इसका परिणाम एकता नहीं बल्कि बिखराव होता है। बाबिल का मीनार इस भांति किसी भी प्रयास की सीमाओं को प्रकट करता है, जो चाहे कितना भी भव्य हो, जो आत्म पुष्टि से उत्पन्न होता है, दक्षता के लिए मानवीय गरिमा का त्याग करता है और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना स्वर्ग तक पहुंचने की इच्छा रखता है। श्रोताओं, इसके विपरीत नबी नहमिया की पुस्तिका हमारे लिए प्राचीन इसराइल के इतिहास की एक अति संवेदनशील स्थिति को प्रस्तुत करती है। बाबिलोन निर्वासन के उपरांत कुछ लोग यरूशलेम लौटकर आए, लेकिन शहर अब तक खंडहर की स्थिति में था। उसकी दीवारों को ढह दिया गया था और द्वारों को जला दिया गया था। नहमिया एक यहूदी जो फारसी राजा की सेवा में नियुक्त था, उसे अपने पैतृक शहर की दयनीय स्थिति की खबर मिली। अपने निर्णय और कार्य शुरू करने के पूर्व उन्होंने उपवास, प्रार्थना और लोगों के लिए निवेदन किए। इसके बाद उन्होंने राजा से यरूशलेम लौटने की अनुमति मांगी और वहां पहुंचने के बाद चुपचाप विध्वंस क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी ओर से निदानों को नहीं थोपा। उन्होंने परिवारों को बुलाया और दीवार के एक भाग का पुनः निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने उनकी बातों को सुना, उनकी कोशिशों का संचालन किया और कोई विरोध होने पर उनकी चर्चा की। यह वृतांत हमें यह दिखलाता है कि शहर का पुनर्जन्म कैसे हुआ। इसकी पहल किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई, लेकिन इसके लिए सभों ने अपने उत्तरदायित्वों को साझा किया। नर नारियां, पुरोहितगण, शिल्पकार, घरों के प्रधान और युवाओं, सभों ने अपनी ओर से एक भूमिका निभाई। यह परियोजना ईश्वर को केंद्र बिंदु में रखते हुए शुरू की गई, जहां हम पत्थरों के निर्माण के पूर्व संबंधों को पुनर्निर्माण होता पाते हैं। इस भांति प्राचीन यरूशलेम को पुनः एक जन सामान्य भाषा प्राप्त हुई, जो एक रूपक नहीं बल्कि एकता का रूप था। मुख्यतः वह एकता जिसकी शुरुआत तब होती है जब सभी लोग अपनी भूमिका को वहन करते हैं और यह पहचानते हैं कि उनकी शक्ति प्रभु से आती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व नेता, नोबेल पुरस्कार विजेता और एआई विशेषज्ञ बोर्गो लाउदातो सी में एकत्रित होंगे। कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे उद्यान बोर्गो लाउदातो सी में वैटिकन 14 से 16 जुलाई तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु युद्ध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सभा की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर के 200 से अधिक जाने माने नेता और शांति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। पोप लियो 14वें के नए प्रेरित विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास से प्रेरित होकर, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव की सुरक्षा के लिए समर्पित है, यह सभा ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, बढ़ती अस्थिरता और परमाणु हथियार से माहौल लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यह पोप लियो के निरस्त्र एवं निशस्त्रीकृत शांति के दृष्टिकोण का हिस्सा है। 30 नोबेल पुरस्कार विजेता, 30 देशों के प्रतिनिधि, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकारें, 20 प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, जिनमें ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एएआरयू और एंथ्रोपिक शामिल हैं। साथ ही दुनिया के 30 प्रमुख विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान साथ मिलकर आज मानव के सामने मौजूद मुख्य चुनौतियों पर कॉन्क्लेव की शैली में बातचीत करेंगे, खासकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, नई तकनीकी के प्रबंधन, निरस्त्रीकरण एवं शांति की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्था के विकास पर चर्चा करने की उम्मीद है। चर्चा के केंद्र में एक नए वैश्विक मॉडल की खोज होगी, जो नए परिवर्तन, जिम्मेदारी और नैतिकता को मिला सके। घोषणा का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के लिए सिद्धांत एवं गाइडलाइन बनाना है, जो सहयोग, मानव सम्मान, पूर्ण मानव विकास एवं लोगों के बीच शांति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। वेनेजुएला में आए खतरनाक भूकंप के 3 हफ्ते बाद भी बचाव दल मलबा निकालने का काम जारी रखा है, क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। 24 जून को वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 4,490 हो गई है। वेनेजुएला के अधिकारियों ने रविवार देर शाम दक्षिणी अमेरिकी देश में आए खतरनाक भूकंपों पर ताज़ा अपडेट में कहा कि 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 18,000 लोग अब बेघर हो गए हैं। भूकंप के लगभग 3 हफ्ते बाद भी कई लोगों का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि परिवार मलबे में अपने प्रियजनों के शवों को ढूंढ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग 6,500 लोगों को बचाया गया है। बचाव की कोशिशें हृदय विदारक हैं। रॉयटर ने लागुएरा शहर, जो इस आपदा का सेंटर था, उसकी एक लड़की की कहानी बताई है, जो भूकंप के बाद 24 घंटों तक मलबे के नीचे होश में थी। बचाव करने वाले उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक खास उपकरण की आवश्यकता थी, जो कभी नहीं पहुंचा। उसके 17 साल की दोस्त मरिया ने रॉयटर को बताया कि जब भूकंप आया, तब वे दोनों अपने आने वाले स्नातक की पढ़ाई के लिए एक नृत्य का अभ्यास कर रही थी। 17 घंटे तक मलबे के नीचे फंसी मरिया को आखिरकार जिंदा बचा लिया गया। कार्यक्रम की तैयारी हेतु अभ्यास कर रही 10 में से 6 को बचा लिया गया है। इस आपदा के बाद ऐसी ही कई कहानियां सामने आई हैं। इस बीच विदेश से आए अग्निशमक और विशेष राहत दल, जिन्हें शुरुआती आपातकालीन कार्यों के दौरान राहत कार्य में लगाया गया था, अब अपने देश लौट रहे हैं। एक ब्रिटिश अग्निशामक ने बीबीसी को बताया,

बहुत खास थी। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने अगले 6 महीनों में 1.3 मिलियन लोगों को मानवीय मदद देने के लिए लगभग $300 मिलियन की अर्जेंट अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भूकंप से $6.7 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो वेनेजुएला के GDP का लगभग 6% है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 5 साल से कम उम्र के 3.7 मिलियन अफगान बच्चों को कुपोषण का खतरा है और देश में सबसे अधिक भूख के दिनों में समय से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील की गई है, क्योंकि खाने की कमी और खराब पोषण देश के सबसे छोटे एवं सबसे कमजोर बच्चों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट पूरे देश में बच्चों के पोषण में खतरनाक गिरावट को दिखाती है और वार्षिक कुपोषण की अवधि तेज होने से पहले बचाव के उपायों में तुरंत निवेश करने की अपील करती है। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुसूचित जाति के क्रिश्चियन के अधिकारों और मणिपुर में मानवीय संकट पर चिंता जताई गई है। ज्ञापन पर CBCI के अध्यक्ष कार्डिनल एंटनी पुला एवं CBCI के महासचिव महाधर्माध्यक्ष अनिल कुट्टो के हस्ताक्षर हैं। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में CBCI के डिप्टी सेक्रेटरी फादर मैथ्यू कोइकल, कैथोलिक काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंटोस एंटनी और जोनाथन भी शामिल थे। सम्मेलन ने सरकार से प्रस्तावित संशोधन बिल और हाल ही में नोटिफाई किए गए नियमों को वापस लेने की अपील की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार, आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.ovolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।